संत एकनाथ महाराज की रचना आप सुन रहे थे डॉक्टर वसंतराव देशपांडे के स्वर में। संगीतकार थे डीवी करंदीकर। भक्ति संगीत के कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना है रेखा रायरीकर के स्वर में। रचनाकार है संत एकनाथ महाराज।

संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना आपने सुनी रेखा रायरी करके स्वर में। कार्यक्रम के अंत में अब सुनिए पंडित भीमसेन जोशी के स्वर में संत कान्हो पत्रा की रचना।

ಶಭಕ್ತಿಯೇ ಸದಾ ಶಕ್ತಿ.

கெடுத்தான் கிட்டத்தட்ட

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभिया झपताल में तबला वादन सुन रहे थे। कलाकार थे पंडित अभिजीत बंद्योपाध्याय। आज आपके साथ हारमोनियम पर संगत कहे थे हिरण मोय मित्रा। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 2400 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You are listening to a tabla recital in Jhaptal by our artist Pandit Abhijit Bandyopadhyay, accompanying on the harmonium Hiranmoy Mitra. This program was recorded and produced in the studios of All India Radio, Kolkata, for Ragam 24/7 Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, आपने ट्यून किया है रागम 24/7 DTH चैनल। आज के शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। कलाकार है विजय बख्शी। आपने प्रस्तुत किया राग नटसारंग सुनते हैं। विलंबित एकताल में निबद्ध रचना के बोल है सुना सुना फिर याद और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है मन मंदिर में मूरत उनकी। साथ संगत हारमोनियम चैतन्य कुंटे, तबला मिलिंद पोटे। तो आइए सुनते हैं विजय बख्शी द्वारा प्रस्तुत राग नटसारंग।

अभी आपने सुना राग नट सारंग, कलाकार थे विजय बख्शी। आपके साथ हारमोनियम पर थे चैतन्य कुंटे, तबले पर थे मिलिंद पोटे। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं विजय बख्शी द्वारा प्रस्तुत राग कृष्ण कल्याण। विलंबित रूपक में निबद्ध रचना के बोल है गुना की आघड़ी, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है काहे बंधेरी माई कन्हाई। साथ संगत हारमोनियम संजय गोकटे, तबला मिलिंद पोटे। तो आइए सुनते हैं राग कृष्ण कल्याण, कलाकार विजय बख्शी।

श्रोताओं, अभी आपने सुना विजय बख्शी द्वारा प्रस्तुत राग कृष्ण कल्याण। आपके साथ हारमोनियम पर थे संजय गुप्ते, तबले पर थे मिलिंद पोटे। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है मुजाहिद हुसैन खां का गाया राग पूरिया कल्याण. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल हैं आज सो बना ब्याहन आया, और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है. बोल हैं मोरे घर आजा. तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने, और हारमोनियम पर अशोक कुमार ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ हैव फॉर यू अ वोकल रिसाइटल बाय मुजाहिद हुसैन खां. He's accompanied on the tabla by Vinod Pathak and on the harmonium by Ashok Kumar. Mujahid Hussain Khan first presents rag Puriya Kalyan, in which you will hear the Vilambit Khayal set to Ek Tal, and this will be followed by the Chota Khayal set to Drut Teen Tal.

0: अभी आप मुजाहिद हुसैन खां का गाया राग पुरिया कल्याण सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने और हारमोनियम पर अशोक कुमार ने। और लीजिए अब सुनिए राग मालकौंस। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं पीर न जानी बलमा, और तराना तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने और हारमोनियम पर अशोक कुमार ने।
1: यू जस्ट हर्ड राग पुरिया कल्याण। कंटिन्यूइंग विद हिज वोकल रिसाइटल, वी नाउ हैव मुजाहिद हुसैन खान presenting Rag Malkons, in which you will hear the Bada Khayal set to Vilambit Ek Taal, followed by a Tarana set to Teen Taal.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, आपने ट्यून किया है रागम 2400 घंटे हिंदुस्तानी संगीत कार्यक्रम में. आप सभी का स्वागत. सुनते हैं शास्त्रीय गायन. कलाकार है प्रकाश साळुंखे. प्रारंभ में आपने प्रस्तुत किया राग सरस्वती सुनते हैं. विलंबित एकताल में निबद्ध रचना के बोल है लागे तुमरे चरना, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है साजन आए ना. साथ संगत तबला रोहन चिंसोरकर और हारमोनियम उपेंद्र सहस्रबुद्धे. तो आइए सुनते हैं प्रकाश साळुंखे द्वारा प्रस्तुत राग सरस्वती.

श्रोताओ, अभी आपने सुना प्रकाश साळुंखे द्वारा प्रस्तुत राग सरस्वती। और अब कार्यक्रम में सुनते हैं प्रकाश साळुंखे द्वारा प्रस्तुत राग मियां की तोड़ी। विलंबित एकताल में निबद्ध रचना के बोल है अब मोरे राम, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है लंगर का करिए जिन मारो। साथ संगत तबला रोहन चिंसोरकर, हारमोनियम उपेंद्र सहस्रबुद्धे। तो आइए सुनते हैं राग मियां की तोड़ी, कलाकार प्रकाश साळुंखे।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे प्रकाश साळुंखे द्वारा प्रस्तुत राग मिया की तोड़ी। आपके साथ तबले पर थे रोहन चिंचोरकर, हारमोनियम पर थे उपेंद्र सहस्रबुद्धे। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग रागेश्री में सरोद वादन. कलाकार हैं राज रूपा चौधरी. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं रुद्र नारायण कल्याणी.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस इवनिंग वी फर्स्ट प्रेजेंट आ हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल. लिसन टू अ सरोद रिसाइटल इन राग रागेश्री. आवर आर्टिस्ट दिस इवनिंग राज रूपा चौधरी. Accompanying on the tabla, Rudra Narayan Kalyani.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग रागेश्री में सरोद वादन सुन रहे थे। आज की कलाकार थी राजरूपा चौधरी। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे रुद्र नारायण कल्याणी। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं रूपक और तीन ताल में तबला वादन। आज कलाकार हैं राजेश कुमार सारदा। आज आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं सोमनाथ बर्धन। राजेश कुमार सारदा तबले पर पहले प्रस्तुत कर रहे हैं रूपक ताल।
1: यू आर लिसनिंग टू अ सरोद रिसाइटल इन राग रागेश्री by our artist Raj Rupa Chaudhuri, accompanying on the tabla Rudra Narayan Kalyani. This is Ragam, 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the concert, now listen to a tabla recital in Rupak and Tintal by our next artist Rajesh Kumar Sarda, accompanying on the harmonium Somnath Vardhan.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप रूपक ताल में तबला वादन सुन रहे थे। कलाकार थे राजेश कुमार सारदा। राजेश कुमार सारदा कार्यक्रम के अंत में प्रस्तुत कर रहे हैं तबले पर तीन ताल। तो आइए सुनते हैं तीन ताल में तबला वादन, कलाकार राजेश कुमार सारदा।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप तीन ताल में तबला वादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे राजेश कुमार सारदा। आज आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे सोमनाथ बर्धन। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की प्रस्तुति थी। ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You are listening to a tabla recital in Rupak and Tintal by our artist Rajesh Kumar Sarda, accompanying on the harmonium Somnath Bardhan. This program was recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam, 24/7 anytime Indian music.

0: ये आकाशवाणी है। आज के अखिल भारतीय संगीत कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है सुप्रसिद्ध सितार वादक श्री जुनैन खान का सितार वादन। मध्य प्रदेश के भोपाल में जन्मे जुनैन खान का बचपन मुंबई में बीता। मात्र 5 वर्ष की आयु में अपने पिता सुप्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान से सितार की शिक्षा प्रारंभ की। उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान ने अपने अभिनव जाफरखानी बास के माध्यम से सितार की रचना, वादन शैली, तकनीक और इस वाद्य की संभावनाओं को एक नई दिशा प्रदान की। जाफरखानी बास को लयात्मक नवाचार और स्वर की गहराई पर आधारित सितार वादन की एक दुर्लभ और अत्यंत परिष्कृत परंपरा के रूप में जाना जाता है। इस शैली के तकनीक के बारे में श्री जुनैन खान बताते हैं कि इसमें एक साथ 2 और कभी-कभी 3 तारों का प्रयोग किया जाता है। इसमें बाएं हाथ की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों हाथों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होता है। श्री जुनैन खान हलीम अकादमी ऑफ सितार के कार्यकारी निदेशक हैं। यह भारत की पहली सितार अकादमी है जिसकी स्थापना वर्ष 1976 में उनके पिता उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान ने की थी। श्री जुनैन खान जाफरखानी शैली में भारत तथा विदेशों के विद्यार्थियों को सितार की शिक्षा प्रदान करते हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संगीत समारोहों का आयोजन करते हैं और अपने विद्यार्थियों को अपनी कला प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान करते हैं। श्री जुनैन खान ने भारत के अनेक प्रतिष्ठित संगीत समारोह और मंचों पर अपनी प्रस्तुति दी है। तानसेन समारोह ग्वालियर, संगीत नाटक अकादमी के तत्वाधान में आयोजित मारवाड़ समारोह, जिसे पूर्व में मंड समारोह के नाम से जाना जाता था, सामापा संगीत सम्मेलन नई दिल्ली, पंडित नंदकिशोर शर्मा स्मृति समारोह भोपाल, विश्व संगीत दिवस 2025 मैसूर, राष्ट्रीय ध्रुपद समारोह नई दिल्ली प्रमुख है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने प्रस्तुतियां दी है। फ्रांस के नांत में आयोजित फेस्टिवल द एते, इंटरनेशनल रोंडाला फ्लैग स्ट्रिंग फेस्टिवल फिलीपींस, जोंजू इंटरनेशनल सोरी फेस्टिवल दक्षिण कोरिया और अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित इंडिया कम्युनिटी सेंटर में आयोजित बसंत बहार में अपनी प्रस्तुतियां दी है। श्री जुनैन खान चीन के बीजिंग में आयोजित भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में भारत के आधिकारिक सांस्कृतिक प्रतिनिधि के रूप में भी भाग ले चुके हैं। अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। आप आकाशवाणी के अश्रेणीय कलाकार हैं। वर्ष 2018 में सोपोरी एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स द्वारा सामापा संगीत तेजस्वी सम्मान प्रदान किया गया। वर्ष 2022 में मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स अर्थात NCPA के सहयोग से गान वर्धन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद अर्थात ICCR द्वारा एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट के रूप में मान्यता प्राप्त है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है श्री जुनैन खान का सितार वादन। आज की प्रस्तुति का आरंभ वे करेंगे राग रागेश्री से। विलंबित गत 3 ताल में निबद्ध है और द्रुत गत भी 3 ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री अनीश प्रधान।
1: दिस इज आकाशवाणी, वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। Tonight we present sitar recital by renowned sitarist Shri Zunain Khan. Born in Bhopal, Madhya Pradesh, Zunain Khan grew up in Mumbai. He began playing sitar at the age of 5 under the tutelage of his father, Ustad Abdul Halim Jafar Khan, who transformed sitar

0: ये था राग रागेश्री। अपने सितार वादन को जारी रखते हुए श्री जुनैन खान अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग किरवानी। द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है।
1: That was Raag Rageshri by Shri Zunain Khan. He continues his sitar recital with Raag Kirwani, Drutgat set to Teen Taal.

0: आप सुन रहे थे राग किरवानी। आज के संगीत कार्यक्रम का समापन श्री जुनैन खान राग देश में धुन से कर रहे हैं, दादरा ताल में निबद्ध है।
1: यू आर लिसनिंग टू किरवानी। ही कंक्लूड्स हिज सितार रिसाइटल विद धुन इन राग देश सेट टू ताल दादरा।

0: ये थी राग देश में धुन। इसी के साथ आज के अखिल भारतीय संगीत कार्यक्रम में श्री जुनैन खान का सितार वादन संपन्न होता है। आपके साथ तबले पर थे श्री अनीश प्रधान। ये कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबई केंद्र में ध्वनि मुद्रित एवं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: That was धुन in राग देश and that concludes the sitar recital by श्री जुनैन खान. In tonight's national program of music, he was accompanied on the tabla by Shri Anish Pradhan. This program was recorded at the studio of Akashwani Mumbai and the broadcast came to you from Akashwani Delhi.

आप सुन रहे हैं सरोद वादन, कलाकार हैं पंडित नरेंद्र नाथ धर। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय पंडित नरेंद्र नाथ धर। ये है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे पंडित नरेंद्र नाथ धर से राग रागेश्री में आलाप और दो गतें, विलंबित गत और द्रुत गत, दोनों ही तीन ताल।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन। कलाकार थे पंडित नरेंद्र नाथ धर। संगत कलाकार थे तबले पर राम कुमार मिश्रा। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय पंडित नरेंद्र नाथ धर। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय राम कुमार मिश्रा ऑन द तबला। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में शहनाई वादन. कलाकार हैं कृष्णराम चौधरी. राग है बिलास खानी तोड़ी. विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध हैं. This is Ragam 24/7, an exclusive Indian classical music channel. Now listen to a Hindustani Shehnai recital by Krishna Ram Chaudhary. The rendition

आप सुन रहे हैं शहनाई वादन, कलाकार हैं कृष्णाराम चौधरी। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी शहनाई रिसाइटल बाय कृष्णाराम चौधरी। ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे राग केदार। मध्य लयगत झप ताल में निबद्ध है और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। नाउ द आर्टिस्ट रेंडर्स राग केदार।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में शहनाई वादन। कलाकार थे कृष्णराम चौधरी। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी शहनाई रिसाइटल बाय कृष्णराम चौधरी। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है विदुषी सुलोचना बृहस्पति का गाया राग शिवमत भैरव. तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने.
2: This is the Ragam Channel of All India Radio. We now present a vocal rendition by Vidushi Sulochana Braspati. First listen to Rag Shivmat Bhairav. She is accompanied by Vinod Pathak on tabla and Pandit Bharat Bhushan Goswami on sarangi.

0: अभी आप विदुषी सुलोचना बृहस्पति का गाया राग शिवमत भैरव सुन रहे थे और लीजिए अब सुनिए राग हिंडोल। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने।
1: यू लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन इन राग शिवमत भैरव बाय विदुषी सुलोचना बृहस्पति। शी वॉज अकम्पनीड बाय विनोद पाठक ऑन तबला एंड पंडित भारत भूषण गोस्वामी ऑन सारंगी। नाउ लिसन टू राग हिंडोल।

0: अभी आप विदुषी सुलोचना बृहस्पति का गाया राग हिंडोल सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन इन राग हिंडोल बाय विदुषी सुलोचना बृहस्पति। शी वॉज अकंपनीड बाय विनोद पाठक ऑन तबला एंड पंडित भारत भूषण गोस्वामी ऑन सारंगी। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मालती पांडे ने गाई संत जनाबाई की इस भक्ति रचना से।

संत जनाबाई की भक्ति रचना अभी आपने सुनी मालती पांडे के स्वर में। आइए अब समूह स्वर में सुनते हैं गदी माडगुळकर की देशभक्ति पर ये भजन, जिसके संगीतकार हैं मधुकर कोळवलकर।

समूह स्वर में अभी आपने ये देशभक्ति गीत सुना, जिसके गीतकार थे गर्दी माडगुलकर और संगीतकार थे मधुकर गोलवलकर। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं संजीवनी जोशी और सहकारियों के स्वर में पीके क्षीरसागर की ये भक्ति रचना।

पीके क्षीरसागर ने लिखी ये भक्ति रचना भी आपने सुनी संजीवनी जोशी और सहकारियों के स्वर में। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं उदय काले के स्वर में संत चोखा मेळा की ये भक्ति रचना।

संत चोखा मीणा की भक्ति रचना अभी आपने सुनी उदय काले केसवर में। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं संत बहिणाबाई रचित ये भक्ति रचना, जिसे गाया है उत्तरा खेड़कर ने।

उत्तरा केळकर ने गाई संत बहिणाबाई की ये भक्ति रचना भी आपने सुनी। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं लक्ष्मी शंकर और साथियों के स्वर में ये देशभक्ति पर गीत।

देशभक्ति पर गीत अभी आपने सुना लक्ष्मी शंकर और साथियों के स्वर में। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं स्वामी स्वरूपानंद रचित ये भक्ति रचना, जिसे गाया है शंकर घाणेकर।